0: अन्न देवता पानी देवता बैसंतर देवता लूण पंजवा पाया खिरत ता हुआ पाक पवित पापी स्योतन कड्या थुका पइया तित जित मुख नाम ना उचरै बिन नावै रस खाए नानके वै जानिए है तित मुख थुका पाए महला पहला
1: पंड जमिए पंड निमिए पंड मंगण वी आहो पंडो होवे दोस्ती पंडो चलै रहो पंड मोआ

पौड़िया पे ही करना क्यों कला पे ही तारी है। देखा कि तो अपना तरकची पक्की सारी है, जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है। जिसका जी प्राण है को साई मनो विसारी है, अपन थी अपना पे ही काज सवारी है, आप ही काज सवारी है।

पौड़ी चाकर लगे चाकरी जे चले खस में पहाड़, हुरमती सुनो अगली वजो पी दूना खाए, खस में करे बराबरी फिर गैर तेंदर पाए, वजह गवाए अगला मोहे मोहे पाना खाए, जिसता दिता खाव ना तिस कही साबास, नानक हुकम न चले नाल खसम चले अरदास, नाल खसम चले अरदास, नाल खसम चले अरदास।

0: ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣਕਾਰੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। 6 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहतनाज। संसद के मानसून सत्र के शुरू होने से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मानसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उनके पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने छात्रों और अभिभावकों को चेतावनी दी है कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन OMR शीट की जांच के लिए केवल असली OMR ही जमा करें। फर्जी या AI से बनाई गई OMR शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसीलिए छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वो जांच के लिए केवल असली OMR शीट ही जमा करें। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई OMR शीट फर्जी पाई गई है, इसीलिए अब हर शिकायत और हर OMR शीट की सावधानी से आज की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे

0: डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार कक्षा 10वीं के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। शिक्षा बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के बीच एहतियाती तौर पर श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम की चेतावनी के बाद वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और जलभराव हो सकता है। प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और जल स्रोतों से दूर रहने की सलाह दी है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम विदेशी सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की भारतीय मुद्रा जब्त की गई है। बरामद सामान की कुल कीमत करीब 22 करोड़ रुपए है। इस मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धियों में से एक बताया है। पार्टी के IT विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। फिल्म आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में आयोजित भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। फाइनल में आज रात 12:30 बजे न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। महिला कुश्ती में भारतीय पहलवान काजल ने कल हंगरी के बुडापेस्ट में 76 किलोग्राम भार वर्ग में अमेरिका की डायमंड प्रेशियस गिलफोर्ड को हराकर स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता में ये भारत का तीसरा स्वर्ण पदक है। भारत ने 53 किलो और 57 किलो भार वर्ग में 2 रजत पदक भी जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। ज्ञान अमृत।

बीत गए दिन भजन बिनारी। दोस्तों, रब कोई बार लभण वाली चीज़ नहीं है, वो तो साढ़े अंदर साढ़े हर साह विच वसदा है। बस लोड़ है मन दे उस आवाज़ नू शांत करके, है ना, सिर्फ परम पिता परमेश्वर की आवाज़ नू सुनन दी। कहिंदे ने चेते करिए उस दाता नू जिसने दित्ती है जिंदड़ी, उस दे नाम दी महिमा गाइए जिस दी रहमत सब तो उजड़ी।

पूरी आसा जी मनसा मेरे राम। ना मंदिर विच ना मस्जिद विच ना काबे कैलाश, खोजी होवे ता तुरंत मिल जावा, मैं ता हाँ तेरे पास। लखा ओटा आसरे दुनिया दे झूठे ने सब यारा, सच्चा सुख ता मिलदा है बस नाम सिमरन दे पास।

रानी कैकेयी को पूर्ण रूप से अपने प्रभाव में आई देख मंथरा ने शुभ संवाद सुनाया कि उसने ज्योतिषियों से पूछकर ये जान लिया है कि अंततो गत्वा भरत ही राजा होंगे, किंतु उसके लिए रानी को कुछ उपाय करना पड़ेगा। रानी कैकेयी उपाय जानने को आतुर हो जाती हैं। कहती हैं, तेरे कहने से तो मैं कुएं में छलांग लगा सकती हूँ, पति और पुत्र का भी त्याग कर सकती हूँ। यदि तू मेरे ऊपर आने वाले दुख के निवारण के उपाय बता सकती है तो मैं वो उपाय क्यों नहीं करूंगी। मंथरा अपने स्वामिनी को उन दो वरदानों का स्मरण दिलाती है जो राजा दशरथ के पास धरोहर के रूप में थे। अब समय आ गया है कि दोनों वरदान मांगकर वो अपनी छाती ठंडी कर लें। मांग लो अपने पुत्र के लिए राज्य और राम के लिए वनवास, लेकिन ध्यान रखना, राजा से जो मांगो वो देने के लिए जब सौगंध खा लें तभी मांगना, अन्यथा काम बिगड़ जाएगा। रानी कैकेयी मंथरा के वचन सुनकर कृतकृत्य हो जाती हैं। कुबरी

सुधरा उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय लगने लगती है। कहती हैं, यदि विधाता मेरा मनोरथ पूरा कर दें तो हे सखी, मैं तुम्हें अपनी आंखों की पुतली बना लूं। ऐसा कह मंथरा द्वारा प्रेरित हो वो कोप भवन में चली जाती हैं।

जी, मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं जी। प्रोग्राम चल रहा है सोनी सवेर। श्रोतियों, जेकर गल करिए असी नवीं खोजा की, तो फिर अजक दुनिया इको फ्रेंडली टैक्नोलॉजी वाल बहुत तेजी नाल वध रही है। हाल ही के विज्ञानियों ने एक अजिहा प्लास्टिक बनाया है जो मक्की दे स्टार्च तो तैयार होंद ते मिट्टी विच मिलके अपने आप वो खाद बन जाता है। इस दे नाल प्रदूषण तो भी बहुत वड्डी राहत मिलेगी। देखो किन्नी खूबसूरत गल है भी जेड़े मक्की दे स्टार्च तो तैयार किया गया प्लास्टिक है वो सिर्फ और साड़ी जमीन नू खाद ही नहीं प्रदान कर रहा, साडे वातावरण नू भी प्रदूषण मुक्त बनाउण दे विच पहल जेड़ी है ना वो शुरू हो गई है। इस दे नाल ही डिजिटल इंडिया के तहत हुण पिंडां विच भी हाई स्पीड इंटरनेट पहुँचाया जा रहा है ताकि जो साडे बच्चे ने वो घर बैठे ही दुनिया भर की सिक्ख्या जिहड़ी है वह हासिल कर सकन। नवीआं सोचां नवीआं उडाणां हुण रुकणा नहीं, नवीआं सोचां नवीआं उडाणां हुण रुकणा नहीं, असां तरक्की दे इस दौर विच सब तो अगे वधणा है। असां बिल्कुल जी इस अगे वधण वाले दौर दे विच किते पिछे ना रह जाइए, इस करके पता होना चाहिए भी दुनिया किन्नी तेजी नाल बदल रही है। टेक्नोलॉजी दे विच दुनिया दे विच की नवा हो रहा है हैरान कर देंदा है कई बार। तो भारत का प्राइवेट रॉकेट विक्रम 1 भारतीय स्पेस सैक्टर ने इतिहास रच दिता है। देश दे पहले निजी आर्बिटल रॉकेट की लॉन्चिंग ने यह साबित कर दिता कि साडे देश दे नौजवान हुण असमान दीआं हद्दां तोड़न लई तैयार हन। एक होर नवी जिहड़ी साडे कोल हैगी है एजेंटिक AI आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस की असी गल करते हैं, है ना, वो तो आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस है ही, उहदे च ऐड होया एक नवा शब्द एजेंटिक AI। अजकल इस दा दौर है, यह कोई आम AI नहीं है बल्कि एक अजिहा डिजिटल असिस्टेंट है जो साडे कहे बिना ही साडियां ईमेलों के जवाब, मीटिंगा का शेड्यूल ते कंप्यूटर के मुश्किल काम खुद ही निपटा दिंदा है। कहिंदे भी उड्डन लई असमान भी छोटा पै जांदा है जदों बंदा अंदरले हौसले नू जगाउंदा है। नवी सोच नवी उड़ान ही बदलदी है जमाने नू, नवी सोच नवी जिहड़ी उड़ा साडे कोल हैगी है, नवी सोच नवी उड़ान ही बदलदी है इस जमाने नू। बैठ के रोण वाला तां बस हथ मलदा ही रह जांदा है। इस करके कोशिश करनी है भी बैठ के रोण वाले हथ मलदे वाले ना असी बनीए, असी उठिए अगे वधीए और देश की तरक्की दे विच अपना योगदान भी जरूर पाईए।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ, ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 meters ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। 8 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ, ਠੀਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ, ਅਤੇ 8:30 ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰਾਂ।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू, दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक आज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का छात्रों और अभिभावकों को कड़ा निर्देश, फर्जी या एआई से बनी ओएमआर शीट जमा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में आज अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने, इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग के लिए चर्चा करेगी। मॉनसून सत्र कल से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली शीट ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए विद्यार्थियों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए केवल असली ओएमआर शीट ही जमा करें। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई कई ओएमआर शीट फर्जी पाई गई थी, इसलिए अब हर शिकायत और हर ओएमआर शीट की सावधानी से जाँच की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार 10वीं कक्षा के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष

0: कुल 96.78% विद्यार्थी सफल रहे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले दो दशक में भारत की अर्थव्यवस्था में तेज बदलाव आया है।
1: इंडियन इकोनॉमी,
2: भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 13 साल पहले दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी और अब ये दुनिया की 6 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई है। हमने देखा है कि मजबूत आर्थिक संकेतकों के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। हमारे यहाँ महंगाई दर बहुत कम है और पिछले कई सालों से हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। हमारी बैंकिंग प्रणाली मजबूत है और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगभग 1%
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत का बढ़ता विनिर्माण क्षेत्र, मजबूत नवाचार व्यवस्था और आर्थिक सुधार दुनिया भर के निवेशकों और उद्यमियों के लिए नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। जंजीबार के राष्ट्रपति और क्रांतिकारी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मिम्वई भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। आज वे नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत तंजानिया संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। डॉक्टर हुसैन अली मिम्वई आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वैश्विक दक्षिण के साझेदार के रूप में भारत और तंजानिया के बीच विभिन्न क्षेत्रों में लंबे समय से घनिष्ठ मित्रता और सहयोग के संबंध हैं। पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडवर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। वे कल विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे। श्री वास्केज का बुधवार को नई दिल्ली में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और पनामा साझा मूल्यों, आपसी हितों और सद्भावना पर आधारित संबंध साझा करते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने 5 लाख रुपए के उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज भोपाल के जगदीशपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि हस्तांतरित करेंगे। कार्यक्रम में 10,54,000 किसानों के बैंक खातों में सीधे 1,460 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल बर्बाद होने से राहत देने के लिए किसानों को ये राशि दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धि बताया है। पार्टी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। उन्होंने कहा कि इस योजना का आकलन राजनीतिक नजरिए से नहीं बल्कि उसके परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए। राजस्व खुफिया निदेशालय ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा जब्त की गई है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है।

0: मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा और राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश से प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ गया है।
1: मौसम विभाग ने नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों के लिए अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं देहरादून, टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने सभी अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाने, जिला आपदा परिचालन केंद्रों को 24 घंटे सक्रिय रहने तथा राहत एवं बचाव दलों को तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही भूस्खलन संभावित मार्गों पर आवश्यक मशीनरी और संसाधन उपलब्ध रखने को कहा गया है। इस बीच सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने प्रदेशवासियों, चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से मौसम की चेतावनियों का पालन करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: शिमला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश में भी लगातार मूसलाधार बारिश जारी है।
2: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात से बारिश जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, सोलन, बसरमौर में येलो अलर्ट, जबकि अन्य 3 जिलों कांगड़ा, मंडी और शिमला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा विभाग ने कल 20 जुलाई को चंबा, सिरमौर, मंडी और कांगड़ा जिलों में और 21 अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम के अलर्ट को देखते हुए राज्य सरकार ने लोगों से नदी नालों व भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: आकाशवाणी से पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला की अगली कड़ी में हम सुविख्यात निर्देशक और अभिनेता आर माधवन से बातचीत करेंगे। आर माधवन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।
3: इस अवार्ड से रियलाइज किया कि एक प्रतिष्ठा तो है ही, साथ में एक जिम्मेदारी है कि भाई जो काम आप करते आ रहे हो ये तो इसकी शुरुआत है और आपसे ज्यादा उम्मीद की जाएगी और फिर जिस मर्यादा के साथ आप आज तक रहे उससे ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील करता हूँ मेरे सारे लोगों के लिए जिन्होंने एक तो मुझे ब्रेक दिया और फिर इंडस्ट्री में इतने सारे रोल, एंड मेरे ऑडियंस की जो इतने प्यार से मुझे आज तक देखते आ रहे हैं। मुझे लगता है कि वो दिशा में हमें जाना बहुत जरूरी है। एक प्रोग्रेसिव इंडिया की जो कहानी है वो हमें दिखाना चाहिए, बनाना चाहिए, वो हमारे फिल्म मेकर्स को समझना चाहिए।
0: ये बातचीत आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल से आज सवेरे 9:10 पर प्रसारित की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल मुकाबले में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। फीफा विश्व कप को लेकर भारत में खेल प्रेमियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है।
4: फुटबॉल का इतिहास आज रात चाहे भारत से हजारों किलोमीटर दूर न्यू जर्सी में क्यों ना लिखा जा रहा हो, लेकिन कोलकाता में भी इस खेल का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। भले ही भारत विश्व कप का हिस्सा नहीं है, फिर भी पूरे बंगाल में फुटबॉल प्रेमी इसके जश्न में डूबे हुए हैं। शहर को नीले और सफेद रंगों से रंगा गया है और हर जगह लियोनेल मेसी की जर्सी दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल खेल विभाग ने कोलकाता में नंदन और एकतारा ओपन एयर स्टेज के अलावा कई जिलों में फाइनल की पब्लिक स्क्रीनिंग की व्यवस्था की है। शहर के क्लबों, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स और मल्टीप्लेक्स में बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं और फैंस अपने पसंदीदा टीम की जीत के लिए पूजा पाठ भी कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज होने वाले फाइनल में स्पेन या अर्जेंटीना कौन बाजी मारता है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा और भारत और इंग्लैंड के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का निर्णायक और तीसरा मुकाबला आज लंदन की लॉर्ड्स में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 से शुरू होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद मुकेश। निजी रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है स्पेस में धाक, भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में। हिंदुस्तान की सुर्खी है वह विक्रम, पहली उड़ान में मिशन पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफल प्रक्षेपण पर स्काईलॉक एरोस्पेस की टीम को बधाई दी। जनसत्ता के अनुसार विक्रम 1 ने उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचाया। दैनिक जागरण ने गृहमंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है बंगाल में बेहद संवेदनशील चिकन नेक की होगी।

0: अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था। पंजाब केसरी ने नागरिकता और चुनाव आयोग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पिछले कई सालों में नागरिकता कानून में कई बार बदलाव किए गए हैं, जिससे जन्म से नागरिकता देने वाले नियमों में बड़े बदलाव हुए। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, शिंदे गुट में उद्धव के सांसदों के विलय को मंजूरी, लोकसभा में एनडीए सांसदों की संख्या बढ़कर 298 हुई, बागी तृणमूल सांसद अलग बैठेंगे। दैनिक भास्कर के अनुसार सीबीएसई की 10वीं की दूसरी परीक्षा ने बदली तस्वीर, रिजल्ट 96.78 प्रतिशत हुआ, पास होने वाले 23.92 लाख से अधिक, 3 लाख छात्रों के अंक सुधरे, 76,000 फेल थे अब पास। हिंदुस्तान की सुर्खी है, ईरान ने अमेरिका के साथ समझौता निलंबित किया, खामनेई ने कहा अमेरिका को कड़ा सबक खिलाएंगे। नवभारत टाइम्स के अनुसार आर्टिकल 370 के बेस्ट फीचर फिल्म यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड, श्रीकांत बेस्ट हिंदी फिल्म, चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन और भ्रम युगम के लिए मम्मूटी बेस्ट एक्ट्रेस। दैनिक जागरण के मुताबिक सड़क हादसे को रोकने के लिए बेहतर रोड डिजाइन पर जोर, गुणवत्ता रोड डिजाइन ऑडिटिंग प्रशिक्षण के लिए भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी को मिली जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने नया ट्रेंड शीर्षक से दिया है, नई पीढ़ी में गोल्ड के इमोशन कम, परिवार की परंपरा छोड़ निवेश पर ध्यान।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू, दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक आज, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का छात्रों और अभिभावकों को कड़ा निर्देश, फर्जी या एआई से बनी ओएमआर शीट जमा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में आज अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने, इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। The headlines. Government convenes all-party meeting today ahead of monsoon session of Parliament beginning tomorrow. National Testing Agency warns students and parents against submitting fake or AI-generated OMR sheets for scrutiny, says such acts can invite legal action. CBSE declares results of Class 10 Second Board Examination 2026. Shri Amarnath Ji and Vaishno Devi Yatras temporarily suspended due to rough weather forecast. And England beat France 6-4 in thrilling third place match to secure bronze medal in FIFA World Cup 2026. Argentina to take on Spain in final tonight. The government has convened an all-party meeting today ahead of the monsoon session of Parliament beginning tomorrow. During the meeting, the government will seek cooperation from all political parties. Monsoon session will commence tomorrow and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. In a stern warning amid rising concerns over manipulated documents, the National Testing Agency, NTA, has issued a strong advisory to students and parents regarding the submission of OMR sheets for scrutiny. The agency revealed that many OMR sheets recently submitted for review have turned out to be fake or artificially generated, prompting closer monitoring of all complaints. A report.
3: The NTA has stated that it is actively scrutinizing every complaint received. However, it cautioned that submitting counterfeit or artificial intelligence-generated OMR sheets could lead to serious legal consequences for the complainants. In a social media post, the agency said students and parents are advised to submit only original OMRs for scrutiny. Any fake AI-generated OMR may invite legal action against the complainant. This development comes at a time when the credibility of the examination process has been under intense public scrutiny. The NTA's move appears aimed at curbing attempts to misuse the re-evaluation or scrutiny mechanism through forged documents created with advanced digital tools. Officials indicated that the agency has already identified several suspicious cases and is taking firm steps to verify authenticity before proceeding with any rechecking requests. The advisory underscores the growing challenge posed by artificial intelligence in academic and administrative processes. With easy access to

0: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला खास खबरां। सरकार ने संसद के मानसून समागम तो पहला आज एक सर्व पार्टी मीटिंग बुलाई है। नैशनल टैसटिंग एजेंसी NTA ने विद्यार्थियों के मापियां नूं सख्त हदायत जारी करदिया फर्जी या AI राही तैयार OMR शीटां जमा कराने ते सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। CBSE ने 10वीं जमात की दूजी बोर्ड प्रीख्या के नतीजे ऐलान दिते ने। खराब मौसम कारण श्री अमरनाथ जी और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थाई तौर पर रोक दी गई है। तो FIFA फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने फ्रांस को हरा के तीजा स्थान हासिल किया। फाइनल में आज अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन नाल होगा। हुण खबरां विस्थार नाल। सरकार ने संसद के मानसून समागम तो पहला अज एक सर्व पार्टी मीटिंग बुलाई है। मीटिंग दौरान सरकार संसद के दोवें सदनों के सुचारू कामकाज को यकीनी बनाने लई सारियां सियासी पार्टियां तो सहयोग मंगेगी। मानसून समागम कल तो शुरू हो रहा है ते 13 अगस्त तक जारी रहेगा। समागम दौरान कई महत्वपूर्ण बिलों ते चर्चा ते उन्हां दे पास होने की उम्मीद है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने नैशनलिस्ट सिटीजनज़ पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी संसद मैंबर लई सदन में वक्रे तौर पर बैठने के प्रबंध में मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने शिवसेना UBT के 6 संसद मैंबरों को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना में रलेवें को भी मंजूरी दे दी है। रलेवें नाल लोकसभा में शिवसेना की ताकत 7 तो वध के 13 हो गई है। केंद्रीय वणज ते उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टैलिन में आयोजित भारत एस्टोनिया व्यापार फोरम संबोधन किया। उन्होंने व्यापार निवेश नवीनता ते तकनोलॉजी के खेत्र में दोवों देशों विचकार सहयोग वधाने ते जोर दिता। इस समागम में सरकारी नुमाइंदियां प्रमुख उद्योगपतियों और दोवों देशों के व्यापारक नुमाइंदियों ने शिरकत की। अपने संबोधन में पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 2 दहाकों में भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी नाल तब्दीली आई है ते आज भारत दुनिया दी सब तो तेजी नाल वध रही प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में एक है।
1: भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 13 साल पहले दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी और अब ये दुनिया की 6 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई है। हमने देखा है कि मजबूत आर्थिक संकेतकों के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। हमारे यहाँ महंगाई दर बहुत कम है और पिछले कई सालों से हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। हमारी बैंकिंग प्रणाली मजबूत है और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगभग 1% हैं।
2: नॉन परफॉर्मिंग लोन्स एट अंडर 1%।

0: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी ले 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज कराओ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। वेला है जी हुन मुख खबरां दा। सरकार ने संसद के मानसून समागम तो पहला अज एक सर्व मीटिंग बुलाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अज मोलदोवा उत्तरी मैसेडोनिया अते रोमानिया दे सरकारी दौरे ते रवाना होंगे। भारत दे चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत ने चौगिरदा सुरक्षा अते निरंतर रहन योग विकास नूं उत्साहित करन लई पंजाब हरियाणा अते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ विच एक रुख लाउण दी मुहिम दी शुरुआत कीती। नैशनल टैसटिंग एजेंसी NTA ने विद्यार्थियों अते मापियां नूं सख्त हदायत जारी करदियां फर्जी जां AI राही तैयार OMR शीटां जमा कराउण ते सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दित्ती है। CBSE ने 10वीं जमात की दूजी बोर्ड परीक्षा के नतीजे ऐलान दित्ते ने। पंजाब भर में गणना फॉर्म भरन अते जमा करवाउण लई अज सारे वोट केंद्रां ते सवेरे 8 बजे तो दोपहर बाद 2 बजे तक एक रोज़ा SIR विशेष कैंप लगाया जा रहा है। खराब मौसम कारण श्री अमरनाथ जी अते श्री माता वैष्णो देवी यात्रा मुलतवी कर दिती गई है। मौसम विभाग ने कल तक पंजाब अते हरियाणा समेत कई राज्यों विच मीह पैण दी संभावना जताई है। महिला कुश्ती विच भारतीय पहलवान काजल ने हंगरी दे बुडापेस्ट विच 76 किलोग्राम भार वर्ग विच सोने दा तमगा जितया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप इंग्लैंड ने फ्रांस नूं हरा के 3रा स्थान हासिल किया। फाइनल विच अज अर्जेंटीना दा मुकाबला स्पेन नाल होवेगा। भारत अते इंग्लैंड विचकार 3 रोज़ा क्रिकेट मैचां दी लड़ी दा तीजा ते फैसला कुन मैच अज लंडन दे लॉर्ड्स विखे खेडिया जावेगा। ए सी हुण तक दीआं मुख खबरां। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। वेला है जी प्रोग्राम हैलो फरमाइश दा।

जे हिम्मत है तां राहां खुद बना के तुर, एवें ना किसे दे पैरां दे निशाना पिछे रुड़। तूफाना नाल खैण दी जिन्हां दी जरूरत हुंदी आ, उही पौंदे ने मंजलां, बाकी तां बैठे रहिंदे ने जुड़। किस्मत दे बूहे खुलणगे, बस तू हिम्मत ना छड़, मेहनत दी अग विच खुद नू तपा के तां देख, लोकी कहणगे तैनू नाकामयाब एथे, तू एक वार बाज वांग उड़ान लगा के तां देख। नमस्कार, सत श्री अकाल, की हाल चाल जी। मैं गिनीशा हाजर हाँ लैके प्रोग्राम हैलो फरमाइश। तो साढ़े दोस्त जिहड़े कॉलर दोस्त ने जानते ने भी प्रोग्राम हैलो फरमाइश तुसी सुन रहे हो जी 873 किलो हर्ट्स से, मीडियम वेव 343.6 मीटर से जी। आकाशवाणी का यह जलंधर केंद्र है, तो प्रोग्राम हैलो फरमाइश साढ़े स्रोतियां दियां सारियां फरमाइशां नू पूरियां करता है। तो इन्हां फरमाइशां नू पूरियां करन दी जिहड़ी कूंजी है, उहदे बारे भी जे गल कर लईए तां जी, उह सफलता दी कूंजी जिहदे नाल तुसी अपनी फरमाइश पूरी करवा सकदे हो, उह की है? उह है जी एक नंबर। नंबर नोट करो जी, 0181-2342-173। नंबर एक बारी फिर नोट कर लो, 0181-2342-173। बिल्कुल जी, जलंधर तो बाहर वाले जिन्हें भी साढ़े कॉलर दोस्त ने, वो एरिया कोड 0181 लगाना बिल्कुल ना भुलना, ता ही तुसी अपनी पसंद का गीत जिहड़ा है वह इंजॉय करूँगे। लो जी, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं असी इस गीत दे नाल। ते नाल ही नाल तुहानू दस दईए भी चाहुंदे हो अपनी पसंद का गीत सुनना, तो फिर फटाफट प्रोग्राम हैलो फरमाइश अपनी कॉल जिहड़ी है मिला दिओ, ते मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्ज़ नूं ही तुसी हमेशा चुनना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना हो गईं। यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मोल्दोवा पहुंचेंगी, जहां वो राष्ट्रपति माया सेंडू से मुलाकात करेंगी और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। वो मोल्दोवा की संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मुलाकात करेंगी और भारत मोल्दोवा संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। मोल्दोवा में ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली यात्रा होगी। इसके बाद राष्ट्रपति उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी, ये भी किसी भारतीय राष्ट्रपति की इस देश की पहली यात्रा रहेगी। यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति मुर्मू रोमानिया पहुंचेंगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रपति की ये यात्रा पूर्वी यूरोप के देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग के लिए चर्चा करेगी। मॉनसून सत्र कल से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। जंजीबार के राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन अली मिविनी भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वे आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे। जंजीबार राष्ट्रपति प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। बैठक के दौरान दोनों नेता भारत तंजानिया संबंधों के समूचे दायरे की समीक्षा करेंगे और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर भी आज जंजीबार के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली ओएमआर ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए छात्रों और अभिभावकों से ये अपील की गई है कि वो जांच के लिए केवल असली ओएमआर शीट ही जमा करें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं और दोनों ही परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस साल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और एस्टोनिया के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने पर बल दिया है। एस्टोनिया में दोनों देशों के इस कार्यक्रम में भारत और एस्टोनिया के सरकारी प्रतिनिधियों, प्रमुख उद्योगपतियों और व्यापार प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया। पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 2 दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था में तेज बदलाव आया है।
1: भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 13 साल पहले दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी और अब ये दुनिया की 6 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई है। हमने देखा है कि मजबूत आर्थिक संकेतकों के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। हमारे यहाँ महंगाई दर बहुत कम है और पिछले कई सालों से हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। हमारी बैंकिंग प्रणाली मजबूत है और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगभग 1%
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत का बढ़ता विनिर्माण क्षेत्र, मजबूत नवाचार व्यवस्था और आर्थिक सुधार दुनिया भर के निवेशकों और उद्योगों के लिए नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज भोपाल के जगदीशपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि हस्तांतरित करेंगे। कार्यक्रम में 10,54,000 किसानों के बैंक खातों में सीधे 1,460 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल बर्बाद होने से राहत देने के लिए किसानों को ये राशि दी जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना होगा स्पेन से। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर 3रा स्थान हासिल किया। और इसके साथ

0: थी ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, डीआरएम 864 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्स, एफएम बैंड 100.9 मेगाहर्ट्स, एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्स, आकाशवाणी अमृतसर अते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। थोड़ा रेडियो बेली गौरव जुड़ गया थोड़े नाल और 5 बजे तक अज तुहाडी सेवा दे विच हाजर है। तो प्रोग्राम बहुत सारे साढ़े को चलाने वाले पाए ने। फिलहाल घड़ी दी सुइयां कह रही हैं कि धमक जिहड़ी है वह पैनी शुरू हो गई है। जी हाँ, प्रोग्राम धमक जलंधर पैंदी, तो फिर शुरू करते हैं प्रोग्राम धमक जलंधर पैंदी।

मैसेज पढ़न जा रहे हैं अज दे। विलेज बिलीमार तो प्रेम कुमार, प्रवीण राणी, अलीशा अरमान, राकेश कुमार, ममता राणी, ये सारे जुड़ गए ने। इन्हों भी जी आया नू रमेश बिल्ला चावला पिंड ते डाकखाना खुईयां सरवर तहसील अबोर जिला फाजलगा, आस्था संतोष चावला, हेमंत दीपक, रमेश रॉयल रेजल, वेहान रिजू, बब्बू विहू, तो सारा का सारा चावला परिवार जड़ा है जुड़ गया है। और यशस्वी ये भी इन्हों के नाल जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये अज का आखिरी मैसेज और इन्होंने सारे की मिली जुली फरमाइश है कि जगजीत सिंह का गाया कोई पंजाबी गीत सुना दो। तो लो जी, जगजीत सिंह लैके आ रहे हैं थोड़े सारे वास्ते, मीह पवान वास्ते सौण का महीना।

संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक आज संसद परिसर में शुरू हो गई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन

0: ही रहता नहीं मैं कभी अकेला, जगह जगह पर मैं मिलता हूँ, चाहे कोई भी हो बेला, दर्जन लो या आधी दर्जन भरा हुआ मिलेगा ठेला, जब भी खाओ जी भर खाओ ना करना तुम कभी झमेला, पीले रंग के कपड़े पहनूं बच्चों मेरा नाम है केला। धन्यवाद।
1: लो जी प्यारे बच्चियां ने खूब सारी झड़ी लगाई है अज बरसात दे मौसम दे विच बाल जगत दे विहड़े दे विच, और इहदे नाल बहुत सारे फुल भी खिड़ गए ने, क्योंकि प्यारे बच्चे जो सानू खूब सारियां रिकॉर्डिंग करके भेजते ने ना गुरप्रीत,
2: हाँ
1: ते
2: जी
1: साडे प्रोग्राम दी जिहड़ी रौनक है वह दुगनी चौगनी हो जाती है। और देखो जी प्यारे बच्चे, सानू तुहाडियां रिकॉर्डिंग दा इंतजार रहिंदा है, असीं बार बार कहने आ कि तुसीं इस प्रोग्राम दे विच अपने मोबाइल फोन तो ही साडे प्रोग्राम दे विच हाजिरी लगवा सकते हो।
2: बिल्कुल
1: करना की है कि मोबाइल फोन दे उत्ते रिकॉर्डिंग करनी है और सानू वो रिकॉर्डिंग भेज देनी है, जिवें ए तुसी परफॉर्मेंस सुनदे पए हो ए भी सानू घर बैठे बच्चियां ने ही रिकॉर्ड करके भेजियां ने।
2: सो जदों असीं गल करदे हाँ बाल जगत दे विच नन्नी कलम तू दी सिलसिले दी, इस दे विच तुसीं वी अपनी आवाज़ जिहड़ी है सारे तक पुजदा कर सकदे हो। और जदों असीं लिखण दी गल करदे हाँ, एक पासे पढ़न दी गल कीती सी, हुण लिखण दी गल करदे हाँ, तुसीं लिख सकदे हो, विषय चुन सकदे हो और उस दे लई तुहानूं बहुत सारा पढ़ना पएगा, बहुत सारे विषयां दे उपर अपनी जानकारी इकट्ठी करनी पएगी। सो दूसरियां दीआं लिखियां होईआं कवितावां कहानियां तुसीं जरूर ते जरूर रिकॉर्ड करके भेज सकदे हो, लेकिन जेकर इही कारगुजारी तुसीं खुद अपने हत्थां दे नाल करो ते बहुत ही ज़्यादा चंगा होवेगा। सो इहो जी कारगुजारी की जो असीं गल करते हैं, इस लिए तुहानूं ढेर सारे उपराले बच्चे जरूर ते जरूर करने पैणगे। फिलहाल अपनी वारी का इंतजार कर रहा जी अगला बच्चा तरुण नील गगन के तारे पोएम दे नाल।
3: नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम तरुण है, मैं 8वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। साथ ही आज मैं आपको जो कविता सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है तारे। नील गगन पर लाखों तारे, कितने सुंदर कितने प्यारे, रोज रात को ऊपर आते अजब नज़ारे हमें दिखाते, दिन निकले छिप जाते सारे, कितने सुंदर कितने प्यारे, रहते हो तुम कोसों दूर, तुमसे मिलने को मजबूर, दूर से ही हम करें इशारे, कितने सुंदर कितने प्यारे, झिलमिल करते अच्छे लगते, इच्छाओं को पूर्ण करते, तुम हो सच्चे दोस्त हमारे, कितने सुंदर कितने प्यारे, आओ कभी जमीन पर आओ, चंदा को भी संग ले आओ, हम खेलेंगे साथ तुम्हारे, कितने सुंदर कितने प्यारे। धन्यवाद।
2: प्रोग्राम बाल जगत विच सिलसिला चल रहा जी नन्नी कलम दा, नन्नी कलम तो दे जरिए बच्चे अपनी हाजिरी लगवा रहे ने। और जदों असीं गल करदे हां दिनां दी, जदों असीं गल करदे हां मौसमां दी, रुत्तां दी, बहुत सारी शब्दावली है, बहुत सारी इहो जिहियां चीज़ां ने जिन्हां दे उपर गल्लां बातां विचार कीते जा सकदे ने। सो जदों असीं नील गगन दे तारियां दी गल करदे हां ते इस दे बारे बच्चे ने बहुत वधिया पोएम जिहड़ी है उह सानूं सुनाई है। सो हुण अपनी अगली परफॉर्मेंस वाल रुख करन तों पहलां तुहानूं जरूर ते जरूर एक गल दसना चाहवांगे कि जदों तुसीं अपनी जिंदगी दे विच बच्चे कारगुजारियां कर रहे हुंदे हो, कई बार असीं इहो जिहे छोटे छोटे काम कर दिंदे हाँ जिस दे बहुत ही वड्डे नतीजे हो जाते हैं। उस दे विच जदों असीं बहादुरी दिखाउने अपनी कितें, जदों असीं कोई इहो जिही कारगुजारी करदे हाँ जिस दे विच असीं किसी की जान बचाई हुंदी है, ते उस दे लई सिर्फ ते सिर्फ सराहना जिहड़ी है उह तुहाडे घर या स्कूल विच ही नहीं की जाती, राष्ट्रीय ते अंतरराष्ट्रीय स्तर ते भी तुसी जड़ी है बहुत सारा माण प्यार ते सतिकार प्राप्त कर सकदे हो।
1: सो गुरप्रीत दे कहण दा मतलब प्यारे बच्चे ए है कि तुसी एक पुरस्कार सुनिया होएगा जिन्हों कहिंदे ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, और प्यारे बच्चे ये बहुत सारे बच्चियां नू दिता जाता है प्रधानमंत्री द्वारा। और देखो ये उन्हां बच्चियां नू दिता जाता है जिन्हां ने कुछ विलक्षण बहादुरी भरिया काम किया होवे, और उन्हां बच्चियां नू ये पुरस्कार दिता जाता है। और इस पुरस्कार नू देण दे लई पूरे भारत दे विच्चों बच्चे जिन्हां ने ये प्रेरणादायक काम किया है उन्हां दियां एप्लीकेशनस मंगवाइया जांदियां ने, उन्हां नू मॉनिटर किया जाता है। और उहदी जिहड़ी लास्ट डेट है ना प्यारे बच्चे 31 जुलाई 2026 है। और ये जिहड़ी कैटेगरी है इहदे विच एलीजिबल कौन बच्चे हो सकते हैं जिन्हां दी उम्र 5 तों 18 साल तक दी है। सो प्यारे बच्चियों जे तुहाडे भी आस पास किसी बच्चे ने बहादुरी भरिया काम किया है तो उन्हूं जरूर दस्यो कि वह भी अपनी नॉमीनेशन इस अवार्ड दे लई करवा सकता है। चुनना जिहड़ा है वह सरकार दे हथ दे विच हुंदा है, उत्थों दे जिहड़े भी अधिकारी ने वह देखते हैं कि किहड़े बच्चे ने किन्नी वड्डी उपलब्धि हासिल की है, किन्ना साहस भरिया काम किया है, उहदे आधार ते ये जिहड़े प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिते जांदे ने।
2: जी बिल्कुल। और जदों असीं गल करदे हाँ बाल जगत दे प्रोग्राम दे विच इन्हां सारियां गल्लां बातां दी जिहड़ी असीं तुहाडे नाल सांझ पाउंदे, इस दा मकसद ते मंतव इही है कि तुहानूं जानकारी भी हो जांदी है और नाल दी नाल अगर कोई भी इहो जिहा मौका तुहाडी जिंदगी दे विच आ सकदा है तुसीं जरूर ते जरूर उहनूं ग्रहण करोगे। सो रुक करदे हां जी अगली परफॉर्मेंस दे वल जिहड़ी है जी केशव शर्मा दी, पोएम है जी पानी।
3: नमस्ते।

0: नाम केशव शर्मा है और मैं 6ठी कक्षा का विद्यार्थी हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बाल जगत प्रोग्राम में जो कविता सुनाने वाला हूँ उसका शीर्षक है पानी। सच कहती है मेरी नानी, बहुत कीमती है यह पानी। भर लो अपने सारे बर्तन, ताई चाची और पड़ोसन, जल से है सबकी जिंदगानी। बहुत कीमती है यह पानी, जितना चाहो उतना भरना। नल खोल कर व्यर्थ न करना, ना करना ऐसी नादानी। बहुत कीमती है यह पानी, कुछ लोग जो ऐसा करते हैं, पानी को तुच्छ समझते हैं, छोड़ दे वे अपनी मनमानी। बहुत कीमती है यह पानी। धन्यवाद।
1: लो जी, केशव ने पानी की महत्ता भी दस दी है। और पानी देखो प्यारे बच्चों, बरसातों के बहुत सारा साड़ी धरती के उत्ते वरसदा है और इस पानी नू संभाल के रखण दे लई बहुत सारिया योजनावां बनदियां ने। और तुसीं भी कोशिश करो कि अपने घर दे विच बरसात दे पानी नू स्टोर करन दी कोशिश करो, उनू जमीन दे विच पाउण दी कोशिश करो। और इहदे लई तुसीं अपने मम्मी पापा नू भी सलाह दे सकदे हो कि असीं भी अपनी छत दा बरसात दा जिहड़ा पानी है उहनू स्टोर कर लईए, धरती नू रीचार्ज करन दे विच एक उपराला कर लईए। और इहदे नाल की होएगा कि साडी जिहड़ी धरती है उहदी प्यास भी बुझी रहेगी, और जदों धरती दी प्यास बुझी रहेगी ते उह फिर सानू भी साडी प्यास बुझाउण दे विच खूब सारी मदद करेगी उहनां गर्मी दे दिनां विच।
2: जिस दे नाल नाल गर्मी दे दिनां दे विच होर भी बहुत सारियां चीज़ां ने जिन्हां दा ध्यान सानू रखना है। और जदों असीं सेहत विभाग की गल करदे हां, समां रहिंदे जानकारी साडे तक पुजदा हो रही है, सारियां चीज़ां तुसीं अपने जहन दे विच रखणियां ने, उहनां नूं इंप्लीमेंट जरूर ते जरूर अपनी जिंदगी दे विच करना है। प्रोग्राम शुरू करदे हां वी जरूर ते असीं जरूर तुहानूं दस्सिया सी सारियां ही चीज़ां दे बारे, लेकिन जदों असीं वनगियां दी गल करदे हां ना, वख वख तरहां दीआं वनगियां सुखदीवियां हुंदियां ने लिखण दे विच, बोलण दे विच। और इक इहो जिही वनगी है जिस दे जरिए सानूं कुछ ना कुछ इहो जिहा संदेश मिल जांदा है जिस दे नाल असीं अपनी जिंदगी दे विच कुछ बदलाव जरूर ते जरूर लेके आ सकते हैं। सो वह है जी कहानी। कहानी के जरिए कई बार असं बहुत कुछ सीख सकते हैं, कई बार असं दूसरों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं, और इस तो सिक्ख्या जी है सू जरूर तो जरूर जी है वह मिलती है। और अजिही सिक्ख्या एक कहानी हूँ गुरलीन सू सारे सुना जा रही है, आओ सारे रल मिल के सुनते हैं।
3: मूर्ख लूंबड़ और समझदार कतूरा। एक बार की गल है कि एक कुत्ते का कतूरा अपने मालक के घर के बहर धुप में सुता पिया। मालिक का घर जंगल के कंडे ते सी, इस करके उत्थे बग्याड़, गिद्दड़ अते लक्कर बग्गे जे जानवर आउंदे रहिंदे सन। इह गल उस निक्के कतूरे नू पता नहीं सी। उसकी उम्र भी अजे 2 महीने दी सी। अचानक एक लूंबड़ उत्थे आ निकलिया। उसने आराम नाल सुते हुए कतूरे नू नप लिया। कतूरा इस अचानक होए हमले तो भयभीत हो उठा, पर ओह बड़ी ही समझदार नसल दा सी। उसका पिता मिलटरी विच सी अते मां पुलिस विच जसूसी करदी सी। सिर ते आए संकट नू देख के वह घबराया नहीं अते धीरज नाल बोलिया, लूंबर भरा, हुण तू मैनू फड़ लिया है तो खा ले, पर मेरी एक सलाह है, जेकर तू मन्ने तो इस विच तेरा ही लाभ है। अपने लाने की गल सुन के लूंबर ने पूछा, किहो जिहा लाभ? देख परा, मैं इत्थे नवा नवा आया हाँ, इसलिए अजे बड़ा कमजोर हाँ, पर कुछ दिन खा पी के मैनू मोटा ताज़ा होन दे, फिर आके मैनू खा लवी। वैसे भी मैं अजे बच्चा हाँ, मैनू खा के भी शायद तेरी भुख पूरी ना होवे। लूंबर इस दिया गल्ला विच आ गया अते उसनू छड़ के चलिया गया। कुछ महीनों बाद लूंबर फिर उस घर दे कोल आके उस कतूरे नू पालन लग्या। पर हुण ओ कतूरा कित्थे रहा सी? हुण ओ काफ़ी वड्डा अते पहला नालों काफ़ी समझ समझदा भी हो गया सी। उस समय ओ मकान दी छत ते सौ रहा सी। लूंबर ने उसनू कहा कि अपने बचन अनुसार हेठां आके मेरा भोजन बन जा। जाओ ए मूर्खा, कि कदी किसे ने मौत नू भी बचन दिता है? जा अपनी मूर्खता ते उम्र भर पछतौंदा रह, हुण मैं तेरे हत्थ आउण वाला नहीं हाँ, कुत्ते ने उत्तर दिता।